स्थानेकम् कलेक्टिंग सेंटर्स दीना ये तमंग करने ओनम कलेक्टिंग सेंटर के टक गिल्ला तमंग के नाम क्या अन्न ओना एक अन्य तमंग टक क्या ना में यारु अमतर ना मने में पासपोर्ट के तीर दाम पूर्ण राम अपे इधर नाम कोम अधिकवाड़ी ने एक अन्य साह होता है मरे तमंग के पासपोर्ट कारी लाइसेंस कारी मौका नमतीय ना रक उन्नट पेन्ना नहीं कर तंग अपे वचन उच्चारण करी मत ते गोलंट द तुम पारा कहाँ नहीं ना एक अपारी वाले कर करना घर में कोई अपे ना हमारी तंग वही जो वाले काने ओबे ओम करना के तंत्र ओबर तीन ने तंत्र की ला एक कर करने का इधर पासे एम प्रतिपाल लंका वही जो आगे आई ये तंत्र की ला कोले आर के डॉक्टर लंका टाइम नो ना वर्षन है डॉक्टर के कंप्यूटर के टे वाइट बोर्ड के टे तना वो कोम संधार देना ये प्रतिपाल वाला याम किसी वारदात तीन वनां अब नॉर्मलिटी का तीन वनां पमना वाइट दूरिया वनस क्लिनिक मार्गिंग उब आम तला यू नो इन्ना नेगर ता खच्चा करन ये मन तंग एक टो पड़ी सुलुप देशा केवल आवे देनो ये मन तंग केरो इन्ना वैद्य अपने तंग डॉक्टर एक टेलीकंसल्टेशन एक लाइटिंग कर करने के लिए उन्हें एक गल्ला देनो ये मन तंग तमांटे इलगन्नत पुलंग की इनके रखता गल्ला दूर इन्ना नंग टेलीकंसल्टेशन एक इलगन्न पुला दें बहुत ने इल्ला नॉन अपटर टेस्टेक कल देने में टेस्टेक कल देने इधर अत्तर में ये मावाशन है एक तीरने एक रगन नॉन डॉक्टर निरपराधी राजेय मुदल वैधांगल ना एक अम्म टेस्टेक का मात्रमें तुम टक करना मावाशन है एक नॉर्मल ना दें वाइटमिन डी इस र नंगे टेस्टेक करा देंगे एक अभी करने है करने ते कटे देंगे वो मुदल ले करनी था एक लो है त्यावक पमने विनो एक अट दिवान यह मने तू ओन में किन कोटा विटामिन डी गन्नो नंग उनका खून दाई एक उनका गुड़ दाई का एक ने आप ये रट दें सामारे का नंग खून दाई विंटर का अली विनो कोटा इरायानी पैट्टे कटा अली इट एक ने ता अपने आलू के ले बिन्ने थी विनो कोटा ऐंते कैंदुल तो ऐंते किन वहाँ के ने ऐंते इनो कोटा वाइटमिन डी है दिन्ने हमें वाइटमिन डी उन्होंने उन्हें बाग पड़े वाले का टे विशेष में कैल्शियम उड़ाके नहीं मिलता वाइटमिन डी ऐतरम काउरुद गन्नो ना उनको तो टेस्ट करना वाशन है खालू हम अति ना अपे वाके हम अति ना ईस्ट एशियन ऐसा उत्ते ईस्ट एशिया ये मकान डे गन्नो ना उनको खुदा है यानी एक उनको खुदा है अपे मांस पेशी बल्ट मोले साइल बल्ट अपे मस्पिडु वेदनावल अस्थि वेदनावल गुड़ा कड़ू ना वाइटमिन डी गन्नो ना ये तो बताते एक गन्नो ना एक मंटे मांस भी में तीव्र ना तेट्टू आती भी ना नितर लेडर रोग तो उनको अपने ऐटे नितर म नासे उगुरा पेनालु आसित रोग नितर म कैसा दिए ना ये आलसात बहुत होता ही में यहाँ पे इम्यून सिस्टम में का होता था क्रियाकारी करने था ये वाले दिन मत तड़ुए ना अरे तेरे तेरे तमाई अपने अपने मनोभावे अबे मनोभावे अपने उनका केहल नहीं आगे न पुलवांग अपने स्ट्रेस से कती है निकलने दिकर आगे न पुलवांग एकात इगरी सा माँग उपदेश देना वा वाइटमिन डी हम के निक मा आरागानों ने किया एक एक आमारो डाकने पढ़े ने पारे वितरक के ऐंगे सांत्रुप्त कर गए नहीं बसन दा दावस कट पित्ता गाने दिन हायको दोलाक एक दिक ඉතින් ඒක අපිට ගොඩාක් ලාභ ප්‍රයෝජන තියෙනවානේ. එතකොට අනිත් දේවල් අනිත් පරීක්ෂණ ගැන, ඒ කියන්නේ අල්ට්‍රාසවුන්ඩ්, එක්ස්රේ, සීටි, ඒ වගේ දේවල් ගන්න, ඒවලත් වෛද්‍යවරයා යොමු කරනවා. ඒක ඒක රජයේ දේවල් වලට රජයට යවුවාම ටික කාලයක් ගත වෙනවා. නමුත් දැන් එක්ස්රේ अटकाटू वाले एक्सरे करने का एक यानी पीटर कौन दे दाना ही से वाले मिटे योगे अटकाटू तो हम बंदो एक्सरे अपने रोहाल टे खेले में आना अपने देना पुलवां एक अटा अपॉइंटमेंट एक गाना वाशन है खेले में आना अपने उपदेश देने पुलवां रोहाल टे गिला खेले मर करने गिला तवत क्रम एक तीनों पुद्दली